0: अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं जुनेद जमशेद और आप सुन रहे हैं हांगकांग की शाम।
1: हुकूमत ने सन 2017-18 के तालीमी साल से किंडरगार्टन एजुकेशन स्कीम नाफिज कर रखी है। इस स्कीम में शामिल तमाम किंडरगार्टन सिर्फ उन बच्चों को दाखिला दे सकते हैं जिनके पास दुरुस्त रजिस्ट्रेशन दस्तावेजात हों, यानी किंडरगार्टन दाखिले के लिए रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट RC या किंडरगार्टन दाखिला पास AP। अगर वालदेन अपने बच्चों का दाखिला तालीमी साल 2027-28 के लिए किसी स्कीम में शामिल किंडरगार्टन में कराना चाहते हैं तो उन्हें

सितंबर से नवंबर 2026 के दौरान में एजुकेशन ब्यूरो से अपने बच्चों के लिए इलेक्ट्रॉनिक रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट ERC या EAP के लिए दरख्वास्त देना होगी। वालदैन RC के लिए उस सूरत में दरख्वास्त देने के अहल होंगे कि उनका बच्चा 31 दिसंबर 2024 या उससे पहले पैदा हुआ हो और तालीमी साल 2027-28 में किंडरगार्टन की नर्सरी K1 जमात में दाखिला ले रहा हो। दरख्वास्त दहिंदगान आई एम स्मार्ट मोबाइल ऐप या एजुकेशन ब्यूरो की वेबसाइट के जरिए ऑनलाइन दरख्वास्त दे सकते हैं। दरख्वास्तों और गाइडेंस नोट की नकल तालीम ब्यूरो की वेबसाइट से डाउनलोड की जा सकती हैं और होम अफेयर्स डिपार्टमेंट के ज़िले दफातर से भी हासिल की जा सकती हैं। मज़ीद मालूमात के लिए बराए करम दफ्तर अवकात में एजुकेशन ब्यूरो के किंडरगार्टन एडमिशन सेक्शन 2 से इन नंबरों पर रब्ता करें 3540-6808 या 3540-6811।

घरों में घुसने की इजाजत नहीं दी जाती, चाय कॉफी सर्व नहीं की जाती, उनके लिए बैठकें नहीं खोली जाती। शाहजी ने गहरे दुख से आंखें मिचनी। पर शाहजी, मैंने गुलुगीर लहजे में उनकी तवज्जो बटाने की कोशिश की। उन्हें करंट सा लगा और वो पूरी आंखें खोलकर बोले, नहीं नहीं, अभी ये कहानी अधूरी है, इसका आखिरी हिस्सा तो अभी सुनाना बाकी है। उन्होंने सर झटक कर दुख भगाने की कोशिश की, जब नाकाम रहे तो उसी जहरीले लहजे में बोले, इस जनवरी में जब मैं अमेरिका से लौटा तो एयरपोर्ट पर मुझे मेरे ब्रिगेडियर बेटे ने रिसीव किया। मैं उसके साथ सरकारी जीप में बैठ गया। हमने बातें शुरू कर दी। जीप चलती रही, जब रुकी तो मैं हैरान हो गया, क्योंकि मैं जनरल पिंचर के उसी घर के सामने खड़ा था जहां 51 बरस पहले मैं सख्त सर्दी में ठिठरता रहा था। सामने मेरी बहू, मेरे पोते पोतियां खड़े थे। हाँ, मेरे बच्चों, तुम यकीन करो, मैंने अपने बच्चों के साथ बरामदे में पांव रखे, वहां से दरवाजा उबूर किया, अंदर सहन में आया, एक एक कमरा फिरकर देखा, पूरे एतमाद के साथ हर चीज छूकर देखी, लेकिन मुझे कहीं खौफ, मरूबियत और कमतरी का एहसास नहीं हुआ। मेरे दिल की धड़कनें बेकाबू नहीं हुई, मेरी कनपटियों में आग नहीं लगी, मेरे हाथों में पसीना नहीं आया, मेरी गर्दन नहीं झुकी, मेरी पलकें नहीं कांपी। शाहजी रुके, हमें देखा और फिर हंसकर बोले, मेरे बच्चों, ऐसा क्यों हुआ? सिर्फ इसलिए कि अब मैं ब्रिटिश आर्मी का एक गुलाम कैप्टन नहीं था, पाक आर्मी के एक ब्रिगेडियर का बाप था। और हाँ, तुम लोग पूछ रहे हो, इस आजादी ने हमें क्या दिया? तो मेरे बच्चों, इस आजादी ने हमें आकाओं के बरामदों पर चढ़ने का हौसला दिया। शाहजी फिर रुके, चंद लम्हों तक कुछ सोचा और फिर निस्बतन ऊंची आवाज में बोले, पर यार, तुम लोगों का भी कोई कसूर नहीं, ये आजादी कम वक्त होती ही ऐसी है, जितनी भी हो कम लगती है। जो मोहब्बत और जो आजादी इंसान को कनाज सिखा दे, उसे महदूद रहने, साबिर रहने पर मजबूर कर दे, वो मोहब्बत ही कब होती है, वो आजादी ही कब होती है? यारो, तुम लोग जो आजादी पर शाकी हो, यही तो इसके आजाद होने की निशानी है। कभी गुलामों ने भी कहा है कि इस आजादी ने हमें क्या दिया? इस कॉलम के शाहजी मारूफ शायर और अदीब सैयद जमीर जाफरी मरहूम है। आजादी और मोहब्बत, मारूफ मिजाहिया शायर मरहूम जमीर जाफरी की आप बीती

0: अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आपका अपना एहसन खान। आप सुन रहे हैं हांगकांग की शाम अपने इंतहाई अच्छे मेज़बान आबिद अली बेग के साथ। बहुत शुक्रिया, खुश रहिए।
1: एम्प्लॉयर्स को टाइफून, तूफानी बारिशों या सुपर टाइफून के बाद इंतहाई हालात यानी एक्सट्रीम कंडीशंस में काम के इंतजाम पर मुलाजमीन के साथ पहले ही से तय करना चाहिए, जैसा कि ड्यूटी के लिए रिपोर्टिंग, काम से फरागत के औकात, काम का दोबारा आगाज और घर से काम करना वगैरह। जब हुकूमत इंतहाई हालात का ऐलान करती है, सिवाय काम के लिए रजामंद जरूरी अमले के, मुलाजमीन को महफूज मकाम पर रहना चाहिए, फौरी तौर पर काम पर नहीं जाना चाहिए और हुकूमती ऐलानात को सुनना चाहिए। तफसीलात के लिए देखिए लेबर डिपार्टमेंट की तरफ से कोड ऑफ प्रैक्टिस इन टाइम्स ऑफ टाइफून्स एंड रेन स्टॉर्म्स। तलब और बेकैफी। तलब ही कदर का पैमाना है। जहां तलब भरपूर तरह से पूरी हो जाए, कदर जाती रहती है। प्यासा कुएं की तरफ मुंह करके चलता है और जब तलब पूरी हो जाती है तो उसकी तरफ पीठ मोड़ लेता है। तलब को जिंदा रखना गोया दिलचस्पी को जिंदा रखना है। अगर प्यासे को पानी पिलाना नेकी है तो उसकी कुछ प्यास जिंदा रखना दोहरी नेकी है। इससे जरूरत भी पूरी हो जाती है और नेमतों की कदर भी कायम रहती है। अपनी और दूसरों की तलब और प्यास हमेशा जिंदा रखिए। प्यास की तस्कीन जरूर कीजिए, मगर जरा थम थम के। कहीं ऐसी बेहतियाती न कर बैठिए कि लज्जत अंदोजी के जोश में तलब के पैमाने जल भर जाएं और बाकी जिंदगी बेकैफी में गुजरे। प्रोग्राम के आखिर में आप सुनेंगे नुसरत फतेह अली खान की आवाज में एक नगमा। हांगकांग की शाम की ये खूबसूरत महफिल हमने आपके लिए सजाई RTH के रेडियो 3 पर। इसके लिए हमसे ताबुन किया था होम अफेयर्स डिपार्टमेंट हांगकांग ने। हांगकांग की शाम की लाइव नशियात या गुज़िश्ता एक बरस के प्रोग्राम आर्काइव्स में सुनने के लिए RTH के रेडियो 3 की वेबसाइट विजिट कीजिए। अगर आप चलते फिरते हांगकांग की शाम हर इतवार की शाम 8:05 पर सुनना चाहें तो अपने स्मार्टफोन पर RTH के ऑन द गो या RTH के माइंड नामी ऐप डाउनलोड कीजिए। आज की इस खूबसूरत शाम से अपने मेज़बान आबिद अली बेग को आइंदा इतवार तक के लिए इजाज़त दीजिए। अपना और दूसरों का बहुत ख्याल रखिए। आने वाला यौम आज़ादी आप सबको मुबारक हो। शब बख़ैर और अल्लाह हाफिज़।

बोल बेटा बम बम ब्रू पढ़ के बोल बेटा बम बम ब्रू पढ़ के बोल बेटा खिड़की खोल बेटा बम बम चिका बम बम चिका बम बम ए बम बम मकुक बम बम मकुक बम बम मकुक बम बम मकुक बाबा लोग सुनो काका लोग सुनो दादा लोग सुनो जल्दी जल्दी ए क्या ले बाशा सुना दे कुड़िये ए पुत्रा देख भाई इधर आ।

0: अच्छा गुरु, जब वो ऐसा कहेगी ना तो मैं जवाब क्या दूंगा?
1: जवाब? अरे बांगड़ू, प्यार में जवाब अपने आप सूझ जाता है। कहना अनुराधा।
2: अरे गुरु गुरु गुरु, अनुराधा नहीं, बिंदु बिंदु।
3: अरे तेरी की भूला।
1: कहना कहना
0: क्या?